0: is IT 여보야.
1: दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबाब अहमद और हम लेकर आ गए आपके लिए सुबह 9:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही। सबसे पहले द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशू। रोशिबेना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल में भारत को और अपने लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। जी हाँ, शी कम्प्लीटेड अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन द एशियन गेम्स। आपको याद दिला दे कि रोशिबेना देवी के नाम 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है, 2022 में वो सिल्वर पदक से भी सम्मानित करी जा चुकी हैं और उसके साथ अब 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। शी टुक द सिल्वर मेडल इन द वुमेन सैंडा 60 किलोग्राम कैटेगरी आफ्टर अ हार्ड फॉट बैटल अगेंस्ट चाइनाज जियाओ जैंग। द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे शबाब जी।
2: जी बिल्कुल, आज का दिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे भारतीय खेल प्रेमियों के उठने से पहले, जागने से पहले एक पदक आ गया था और ये पदक दिलाया था, चूंकि ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी। दिन की बोहनी कराई सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स एकलस में कांस्य पदक के साथ ये बोनी कराई। इस वर्ग का जो स्वर्ण पदक चीन और रजत उज्बेकिस्तान के हिस्से में गया। सतनाम और सलमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे। इस दौरान वो चीनी जोड़ी से आधे सेकंड से मात्र पीछे रह गए। वो काफी निराशाजनक रहा था वो सीन, लेकिन अंतिम चरण में आखिरकार पिछड़ गए। वो जो आधा मिनट का जो समय था वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें ये पिछड़ गए।
1: सही बोला आपने शबाब, और हम आगे बढ़ेंगे एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे। हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड 5th इन लास्ट इन अ हीट विद द टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स अर्निंग 868 पॉइंट्स। जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स। वहीं मिक्स 4x400 मीटर रिले हीट 2 में मनुटीएस पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एम आर पूवामम्मा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड। जयकुमार मेंटेन द एडवांटेज डिस्पाइट चाइना एंड UAE क्लोजिंग इन एंड आफ्टर स्लाइटली स्लो एक्सचेंज एंकर किरण पहल हेल्ड द फ्रंट पोजीशन इनटू द फाइनल लैप। चाइना मेड अ लेट सर्च टू पिप इंडिया एट द लाइन बट द इंडियन टीम सेफली क्लिंच्ड द सेकंड प्लेस टू बुक देयर स्पॉट इन द फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ 13:16.23। और वुमेन्स हेप्टाथलॉन हाई जंप में भी अनामिका अनीश ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके इन हाई जंप क्लियर्ड अ बेस्ट हाइट ऑफ 1.74 मीटर्स टू फिनिश सेकेंड इन द इवेंट एंड गैदर्ड 903 पॉइंट्स। जी हाँ, पूजा क्लियर्ड 1.71 मीटर्स टू फिनिश जॉइंट फोर्थ एडिंग 867 पॉइंट्स टू हर टैली। The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because अब अनामिका है 6th place पर 1771 points के साथ और पूजा है 9th place पर 1761 points के साथ। शबाब
2: यह बिल्कुल, उधर मेघा प्रदीप की बात करें तो महिला कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप। सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
1: राइट, और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहां पे ज्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स के अंदर भारत के बेनेडिक्ट बेनेस्टन फिनिश्ड 5th इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स, ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। वहीं मेंस 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्ट अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वर एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर 6th टीम रेस। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8 मिनट्स 2.52 सेकंड्स टचिंग द वॉल 5.13 सेकंड्स बिहाइंड वियतनाम्स गुएन होय हांग। और इसके साथ ही नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट आल्सो। निराशाजनक खबर स्विमिंग की दुनिया से शबाब।
2: हाँ, उधर अगर निशानेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया। हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई। वहीं आकाश भारद्वाज 579 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए।
1: जी, अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है। मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड जो कि क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था, 6 सिल्वर आ चुके हैं जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेटलिफ्टिंग में, 1 वुशू में, 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट, 1 सॉफ्ट टेनिस में है जो कल जय मीना लेके आए थे, विद हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड इन सॉफ्ट टेनिस बिकॉज ये पहला मेडल है इस तरह के स्पोर्ट के अंदर भारत का, 1 बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया और आज 1 रोइंग में भी ब्रॉन्ज आ गया। तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स अभी तक, 14th पोजीशन पर है भारत। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी इस मेडल टेबल के अंदर पोजीशन को और ऊपर बनाएगा, यानी धीमे धीमे करके ऊपर क्लाइंब करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है शाबाब अहमद, हमें दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 10:30 एक बार फिर से। थैंक यू।
0: शुंचो 107 FM रेनबो, शात शुरे शारा दे, शात शुरे शारा दे।
3: शुंचन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते, नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। क्योंकि सुबह के बज चुके ठीक 10 और शुरू हो चुका है आपका अपना नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम, और मैं हूँ आज आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, आज शो की जो शुरुआत है, मैं जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम बात जो है सिर्फ इस शहर की नहीं बल्कि करेंगे साहस समंदर पार की। जी हाँ, क्योंकि आज है मैरीटाइम वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी कि विश्व समुद्री दिवस। अब वैसे तो बॉलीवुड में लोग प्यार में साहस समंदर पार चले जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उस विशाल समंदर को पार करके आती है आपकी सुबह की चाय, आपका मोबाइल और वो कपड़े जो आप पहनकर ऑफिस में बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की गपशप की शुरुआत करते हैं इसी धमाकेदार अंदाज में, यानी कि अगर आपने भी कभी किसी के लिए या किसी चीज के लिए साहस समंदर पार जाने की सोची है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बजने जा रहा है ये सुपरहिट गीत। और इस गीत के बाद बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, यानी कि ठीक सुबह के 11 बजे तक आपके और मेरे बीच कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। सिर्फ दो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति को इस कार्यक्रम में, और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर।

तो दोस्तों इस गीत को सुनने के बाद, जी हाँ बिल्कुल, इस गीत को सुनने के बाद आप सभी से मेरा मन हो रहा है कि आप सभी से एक सवाल पूछूं, और सवाल क्या है, तो चलिए दोस्तों सवाल क्या है वो मैं पूछ लेती हूँ आप सभी से कि ये समुद्र को पहली बार देखने का आपका एहसास कैसा था, या फिर पानी के जहाज और नाव की कोई ऐसी यात्रा जो आज भी आपको याद आती हो। यानी कि दोस्तों अगर आप भी अपने व्यक्तिगत अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों हमारे फोन लाइन्स आप सभी के लिए खुले, हमारा नंबर है 2213-1341-221-3141। तो दोस्तों जब तक आप फोन डायल करके, जी हाँ फोन पर नंबर डायल करके अपने सफर और यादों से जुड़ा हुआ इन सवालों के जवाब देते हैं, तब तक क्यों ना अगली गीत की ओर रुख कर लिया जाए।

0: तो दोस्तों अपने दिल की बात साझा करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार ज्योति जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
0: जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुभ प्रभात।
1: जी मैं बेलियाघाटा से मोहम्मद नासिर।
0: जी आपका स्वागत है नासिर जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया।
0: हाँ तो बताइए,
1: आज आपने जो प्रोग्राम रखा है वो समुंदर और घूमने का एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में आपने कहा
0: जी,
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: आपने

0: है, कहाँ घूमा है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ज्योति जी कि आपसे हमारी पहली बार बात हो रही, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाह रहा हूँ जी। अक्सर और दूसरी बात, मैं ये रहने वाला बिहार का हूँ और अक्सर मैं कोलकाता अपने कारोबार अपने बिजनेस को लेकर के आता रहता हूँ, तो मेरा तो कई बार घूमना हुआ है हावड़ा में स्टीमर पे नाव पे, लेकिन मेरा फैमिली ट्रिप जब भी होता है तो जो लोग पटना से रिलेटेड है वो अच्छे से जानते होंगे कि पटना में मिनिम ड्राइव है।
1: अच्छा,
0: जहाँ स्टीमर और नाव का आप मजा ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनों के साथ अपने परिवार के साथ, तो मैं जब भी आता हूँ तो मैं वहीं जाता हूँ घूमने के लिए। और जब भी मैं पानी के लहरों को देखता हूँ तो मुझे एक चीज जरूर समझ में आता है कि जितनी तेज पानी की मतलब लहरें होती है
1: जी,
0: जितनी स्पीड होती है, ये इंसान की जिंदगी से बहुत बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है।
1: बिल्कुल,
0: और उसे एक एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिलता है कि आप अपनी जिंदगी को किस रफ्तार से लेकर के चलेंगे जो आप ज्यादा लंबे टाइम तक चल सकते हैं और आप सुरक्षित चल सकते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पानी को देख करके, और मैं अक्सर जब भी फैमिली के साथ जाता हूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ और घूम कर करके आता हूँ जी। शुक्रिया ज्योति
1: जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी अच्छी यादों को साझा करने के लिए
0: जी। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 10:19:30, यानी कि बात और गीतों का सिलसिला चलने वाला है यूं ही 11 बजे तक, और आप भी इसी प्रकार अपनी किसी यात्रा को ये यादों को साझा करना चाहते तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलते हैं अब अगले गीत की ओर।

0: वाह बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी का अंदाज और आर डी बर्मन का संगीत और ये नमकीन मस्ती। बिल्कुल दोस्तों, समंदर का जिक्र हो और ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, समंदर सिर्फ गानों और छुट्टियों की मस्तियों तक सीमित नहीं है, इसके साथ जुड़ी है अनगिनत यादें। और वो पहला एहसास जब हमने पहली बार इसी अंतहीन नीले पानी को छुआ था। और इसी याद को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शौभिक शर्मा बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शौभिक जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी, आपने तो बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, हम लोग का बचपन में ले गया है दीदी
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: वेलकम दीदी। मैं बोलूंगा इस बारे में, देखिए हम लोग का जो घूमने, जो बंगाली लोग का जो घूमने जब जाता है ना, एक शब्द बहुत इसको आता है, वो दीपुदा। दीपुदा में दो जिनिस आ जाता है, एक है दीघा। हम लोग का जब बचपन में जब गया था ना, वो गया था हम लोग पहली बार जो गया था वो दीघा में। पर जब भी गया था वो समुद्र में जब देखा था छोटे बचपन में, मैं जब बहुत छोटा था देखा, जब देखा था मैं अबक होकर देख रहा था, इतना सारा ढेव, बड़ा बड़ा ढेव आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था। और जब भी मेरे पापा जब हम लोग का जब स्नान करने ले गया, बहुत अच्छा लगा था, डर भी लग रहा था क्योंकि वो ढेव आ रहा था।
0: बिल्कुल
1: हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा, कान में बोलिए हमारा जो पैर था वहाँ पर बाली जो होता है बाली घुस गया, चिक चिक चिक चिक कर रहा था। हाँ, और समुद्र के पास में मैंने वो बाली के लेकर एक मंदिर भी बनाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा था। और पुरी में जब गया था तो वहाँ पर भी सेम, वहाँ पर था वो छोटा छोटा जो होता है हम लोग का झिनुक होता है, हाँ वो पापत्थर होता है छोटा छोटा, नाना कलर का, वो कलर का होता है वो, ये पत्थर बहुत अच्छा लगता है। वो समुद्र में जब भी जाता है तब तो दोस्त के साथ, उसके बाद गया और भी आत्मीय स्वजन के साथ गया था, बहुत अच्छा लगा था। समुद्र में
0: जाना का एक अलग ही अनुभव होता है, मतलब जब भी जाते बिल्कुल नया सा ही लगता है कुछ ना कुछ। हाँ,
1: दीदी एकदम वो यही, जब भी जाता हूँ ना, आपने जब बोला नया सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और समुद्र में जो जो मांस जो होता है वो जो सनराइज,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा सा लगता है, जो देखते सनराइज बोलिए बहुत देखता हम, जो सुबह जब सौंदर्य में इवनिंग टाइम में जब जो सूर्य जब डूब जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है दीदी, ये मैं बोलूंगा।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब वो दृश्य जो है वो आंखों में समाया हुआ है।
1: एकदम दीदी, आंखों में समा जाता है दीदी, मैं ही बोलूंगा।
0: जी जी, थैंक यू सो मच शौभिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी यादें ताजा करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो दोस्तों, स्टूडियो में वक्त हो चला है 10:27:40, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि अब से कुछ ही देर में, जी हाँ, हम चलेंगे एफएम अपडेट्स पर 20वें एशियाई खेल 2026 पर। जी हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, लेकिन बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही नहीं थमने वाला है, क्योंकि ये चलने वाला है आप सभी के साथ ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 एफएम रेनबो पर अपनी दोस्त ज्योति के साथ। क्योंकि दोस्तों, एशियाई खेल अपडेट्स के बाद फिर से हम जुड़ चलेंगे, यानी कि ठीक 10:35 पर। लेकिन दोस्तों, और बातें जो होने वाली है, बिल्कुल जैसे आप सभी को पता है कि हम आज मना रहे हैं

विश्व समुद्र दिवस, यानी कि समुद्र जो है कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा हुआ है, और जो समुद्र है उनकी यादें, वो जिस प्रकार से अभी हमारे कॉलर्स ने कह कर गए कि वो जो यादें हैं ना आंखों में, उसके कुछ दृश्य जो इस प्रकार से समाये हुए हैं कि वो भुलाए नहीं बोलते। और जब क्षितिज पर, यानी कि आप जब दूर से खड़े होकर देखेंगे ना कि दूर पर समुद्र, यानी कि जमीन और आसमान जो है समुद्र पर, लगता है कि वो एक किनारे पर जाकर मिल रही है, और वो दृश्य इतना प्यारा होता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिलहाल दोस्तों वक्त हो चला है 10:29, यानी कि कुछ ही देर बाद हम चलेंगे 20वें एशियाई खेल के अपडेट्स की ओर, और फिर से जुड़ चलेंगे इसी कार्यक्रम में, यानी कि नॉन स्टॉप गपशप में, सिर्फ उसे 107 FM रेनबो पर।

0: राहत इस बात की है कि अनंत जीत सिंह नारुका और पनिराज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है। भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था। उधर भारत के पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है। अगर कहा जाए तो देलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
1: जी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड टू में हरा दिया। इंडियन टीम वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिया चिटले एंड यशस्वनी घोरपड़े, हु सिक्योर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-0 विन ओवर ईरान विद 11-2, 11-2, 11-4। एंड देन वुमेन्स डबल्स राउंड टू के अंदर भारत की एक और महिला जोड़ी उतरी, दिस टाइम फेसिंग अगेंस्ट देयर मंगोलियन ओपोनेंट्स, जहां पर हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी आसानी से मंगोलिया को भी 3-0 से शिकस्त दे दी। श्री जाकुला and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 11-5, 11-4, 12-10 victory over bowler Erdin Botmuk and Sanja from Mongolia. Wahi men's singles round 1 mein Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline, which read like 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So early start right now for table tennis, but definitely small little smiles, क्योंकि यहाँ पर भारत को at least शुरुआती जीत मिलनी शुरू हो गई है। शबाब
0: जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत सारे खेल आज नए स्पर्धाएं भी शुरू हुई हैं, उसमें एक फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी भी है और उसमें महिला वर्ग में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि तलवारबाजी स्पर्धा में भारत की

0: देते हैं अपडेट्स, जहां ऑल इंडिया क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 हुआ था, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विल्वन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स. द सेकेंड गेम प्रूव्ड टू बी अ थ्रिलर विद सूरज एंड शमीना फाइटिंग बैक फ्रॉम 7-9 डाउन टू लेवल इट एट 9-9 एंड अर्न अ गेम पॉइंट. However, Joshna Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स से. आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की. मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है और पहला मुकाबला था जापान, यानी जो मेजबान टीम है, और अफगानिस्तान ने. तो वहां से ये खबर ये आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है. और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में. 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा. फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी हो गई
0: जी, और कबड्डी के लिए भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपा इन द मेंस ग्रुप ए मैच. और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया. और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है. भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक और चाइनीज ने पाए अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए हैं इन द सेकेंड हाफ. द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग. इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स, व्हाइल चाइनीज ने पाए स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार. सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज ईजी इन दिस गेम. और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेन्स एंड वुमेन्स पिस्टल शूटर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड from the Asian Games with no medal in either individual or team events so far. जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे, लेकिन एक overall अगर आपको picture दे तो pistol ने अभी तक 7 medals produce किए in the last 2 Asias, 3 gold, 2 silver, 2 bronze. और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी mixed doubles के events बाकी हैं. तो ये थे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए, जो शबाब और मैं साक्षी आपके लिए लेकर आ रहे थे. दोबारा एक बार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: You were listening to the Asian Games 2026 update.

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

0: सुबह सच कहूं तो इस गाने की धुन और उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में कुछ ऐसा जादू है कि आंखें बंद करो तो सीधे नीले समंदर की वो ठंडी हवा चेहरे को छूने लगती है। लगता है जैसे हम खुद किसी खूबसूरत टापू की तरफ बहते चले जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, समंदर सिर्फ ख्वाबों, फिल्मों और इस रूमानी मस्ती का नाम नहीं। लहरें की ये जो मस्ती हम गीतों में महसूस करते हैं, हकीकत में इसी समुद्र के सीने पर दुनिया की सबसे कठिन और जिम्मेदार जिंदगी जी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे साथ एक अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि उनकी क्या यादें हैं। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
1: बिलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शुभजीत जी।
1: थैंक यू। आज के टॉपिक के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कुछ साल पहले मैं बौखली गया था, तो वहाँ पर वहाँ से नाव लेके हेनरी आइलैंड जा सकते हैं। तो एक ऐसा द्वीप है जो जहाँ पर एक्चुअली एबंडेंट है, वो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर आप तो जा नहीं सकते आइलैंड तक
0: जी।
1: लेकिन उसके आजू बाजू आप मतलब जब, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल है, तो नाव जब बीच समुद्र में चला गया तो अजीब एक एहसास, मतलब जैसे कि जो गाइड थे वो तो समझा रहे थे कि इसका महत्व क्या है, क्यों अबंडन है, कितने क्या उसका इतिहास है। तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि प्रकृति ने मेरे सामने अपनी एक विशाल और खूबसूरत तस्वीर खोल दी। और जैसे कि दूर दूर तक नीला पानी और वैसे लहरों की आवाज तो पता नहीं चला, क्योंकि मिडिल ऑफ द सी में तो ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो ठंडी हवा थी और सब कुछ, मन में अलग ही शांति, एक सुकून महसूस हुआ। और उस पल ऐसा लगा कि हम लोग अपनी छोटी सी दुनिया में कितनी सीमित है और प्रकृति कितनी विशाल।
0: बिल्कुल।
1: और एक मतलब जैसे कि शाम के टाइम में, जैसे जब कभी दीघा में या पुरी में जब आप बैठते हैं बीच पे, तो सब कुछ अलग, मतलब सबको हटा के आप सिर्फ अगर समुद्र की तरफ देखेंगे, जो सब लोग एहसास करते हैं, तो हम लोग मतलब मुझे ऐसा एहसास होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके कितना कुछ कर, मतलब झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज एक्सप्लोर नहीं करते हैं जो हमारे लिए अननोन है। और सबसे हॉन्टिंग मुझे जो चीज लगता है, शायद आपने भी कभी अगर ऐसा देखा होगा, जैसे कि पूरा अंधकार है और जैसे कि बहुत दूर एक छोटी सी लाइट दिखाई दे रही है
0: जी।
1: जो जो फिशरमैन जो होते हैं, वो जब रात को जाते हैं वहां पर, तो वो जो एहसास है, क्योंकि उथल पुथल समुद्र ऐसा है कि बहुत ही अनसर्टेन है, कब उथल पुथल शुरू हो जाएगा किसी को पता नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें वो लोग अपना जिंदगी को इतना रिस्क लेके, डेंजर लेके ही काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हम लोग के पास वो लाते, वो हम लोग का सबसे मतलब फेवरेट चीज, बंगाली लोगों का तो फेवरेट चीज ही है मछली
0: जी।
1: तो वो एक एहसास मुझे हमेशा फील होता है जब मैं जाता हूँ।
0: बिल्कुल सही और अच्छी बात है आपने बताई कि किस प्रकार वो जो फिशर्स मैन होते हैं, यानी कि नाविक होते हैं, कि वो लोग जो होते महीनों तक अपने वतन, अपने परिवार और अपने के लोगों के बीच से दूर रहते हैं, और तूफानों के बीच उनकी कश्ती भी डटी रहती है, और किस तरह वे उन तूफानों का सामना करते हैं। बिल्कुल
1: जी। और वो लोग का स्ट्रगल चैलेंजेस हम मेरे साथ मेरा तो कुछ छोटा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।
0: थैंक यू सो मच, आपने भी इतनी अच्छी बातें और यादें साझा की हमारे साथ। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: तो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी बताया गया कि जिस पर नाविक जो है अपने परिवार, अपने वतन, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर कैसे उन तूफानों के बीच अपनी कश्ती को कश्ती के साथ डट कर रहते हैं, और जिससे पूरी दुनिया का व्यापार और हमारा रोजमर्रा का जीवन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र जो है सिर्फ एक विशाल जल राशि नहीं है, ये वो कैनवस है जहां इंसान अपनी जिंदगी की उलझने भूलकर लहरों के साथ बहना चाहता है। खुले नीले आसमान के नीचे जब पानी पर तैरती नाव हल्की हल्की डगमगाती है, तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। क्या, तो चलिए सुनते हैं क्या गुनगुनाता है हमारा दिल।

आवश्यक सूचना डाक अदालत अधीक्षक RMS SP मंडल की अध्यक्षता में RMS SP मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SP मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा 4 मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SP मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपनी सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से अधीक्षक RMS SP मंडल हावड़ा 7111-101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों और शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक से दूरभाष संख्या 0332641-5945 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथासंभव साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त। तो दोस्तों, और आज इसी खूबसूरत धुन के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब सुबह के 11 बजने वाले हैं और हमारे इस एक घंटे का सफर को अब किनारे पर डालने का वक्त आ गया है। आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर नॉनस्टॉप गपशप की ये कश्ती समुद्र की लहरों दूरियों का एहसास और आपकी ढेर सारी अनमोल यादों से होकर गुजरी है। बिल्कुल, तो यानी कि दोस्तों आपकी कॉल्स ने इस शो को सचमुच बेहद खास बना दिया। चलते चलते एक बार फिर दिल से सलाम हमारे उन सभी नाविकों मर्चेंट नेवी के जाबाजों और पोर्ट हीरोज के नाम जो समंदर के सीने पर डटे रहकर हमारी इस दुनिया को हमेशा चलायमान रखते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल इसे समंदर की तरह है दोस्तों। लहरें कभी शांत होंगी तो कभी उफान आएगा, लेकिन अगर आपके हौसले की पतवार आपके हाथ में है तो यकीन मानिए हर किनारा आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपकी दोस्त ज्योति आप सभी से लेती हूँ इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए और हाँ, अच्छी धुनें सुनती रहिए। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आपकी दोस्त आप सभी से लेती हूँ इजाजत और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों शबाब अनवर, और हम लेकर आ गए हैं सुबह के 11:30 बजे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द लास्ट वन आवर। और सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग खबर जो आई है पिछले एक घंटे में वो रही बॉक्सिंग की दुनिया से, क्योंकि सुमित कुंदू का जो 70 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का बाउट था वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम हमदन अल सरे, वेल दैट उसमें बिकॉज ऑफ इंजरी ही हैड टू विथड्रॉ। यस, ही कुडंट कैरी ऑन एंड एज अ रिजल्ट दिस हैज बीन द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट हैज कम इन टू प्ले फॉर बॉक्सिंग के काम से, बिकॉज उनको फॉरफिट करना पड़ा अपना थर्ड राउंड। बता दें आपको कि सुमित लैंडेड बिग पंचेज अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट। द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 बिफोर कासिम मेड अ बिट ऑफ अ कम बैक। हाउएवर द सेकेंड राउंड वंस अगेन वेंट टू सुमित विद अ स्प्लिट डिसीजन ऑफ 3-2, बट डिजास्टर struck just seconds into the third round as Sumit suffered a severe knee injury, slipping and hobbling before the medical officer stepped in to stop the bout. Commentators suspected an ACL injury, bringing a heartbreakingly abrupt end to his campaign. And because of this, Iraq's Ali Al Sareh advanced to the quarterfinals. And Shabab, कहना पड़ेगा कि ये जो घटना उनके साथ हुई है वो definitely heartbreaking तो है।
2: जी हाँ, बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि काफ़ी उनसे उम्मीदें भी थी और स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे अगर मुकाबले से बाउट से पहले की बात करें तो। लेकिन उधर हम अगर कबड्डी की बात करें तो यहाँ जलवा भारत का बरकरार है, लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने। चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में।
1: राइट, एंड द अदर बिग न्यूज दैट वी विल नाउ ब्रिंग टू यू और अदर शुड बी मूव ऑन टुवर्ड्स इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, जहां पर हमने देखा कि अनहत सिंह वन एंड रैप्ड अप अ कॉन्टेस्ट विद एन 11-7 विक्ट्री इन द थर्ड गेम, एंड थेरबाय इन द वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 क्लैश वाज एबल टू डिफीट हर ओपोनेंट 3-0 टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। इट वाज अ क्लीन विक्ट्री दैट केम हर वे, 11-4, 11-5, 11-7, गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश। और उससे पहले भी अगर हम स्क्वॉश के कुछ और इवेंट्स के ऊपर आज एक नजर डाले तो ऑल इंडियन क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 भी हमने आज देखा, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विलवन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। एंड मेन सिंगल्स राउंड 1 में भी मनुष शाह एंजॉयड अ कंफर्टेबल स्टार्ट टू हिज मेन सिंगल्स कैंपेन विद अ विन ओवर मलेशियाज वोंग क्वी शेन ऑफ मलेशिया 11-9, 14-12, 11-7, 11-4। सो कन्विंसिंग, कंफर्टेबल, कमांडिंग विक्ट्रीज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश स्पेशली फॉर द इंडियंस। और आज इसी इवेंट के अंदर और भी आप बहुत सारे इवेंट्स देखने वाले, यानी स्क्वाश के अंदर जहां पर आप देखेंगे अभी हमने देखा अनहत सिंह की वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश, उसके बाद अभय सिंह, वीर चौटरानी, तन्वी खन्ना विल आल्सो बी हैविंग देयर इवेंट्स टुडे।
2: होगा तलवारबाजी की बात करें तो सुबह 10:30 बजे हमने एक अच्छी खबर सुनाई थी, लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि भवानी देवी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हम श्रोताओं को बता दें कि भारत के सीए भवानी देवी महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है।
1: राइट, एंड द बिग न्यूज दैट केम इन टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग वाज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशू, जहां रोशी बिना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। हैट्रिक ऑफ मेडल्स फॉर हर इन द एशियन गेम्स, बिकॉज 2018 के एशियन गेम्स में उनको ब्रॉन्ज से नवाजा गया था, 2022 के एशियन गेम्स में उनको सिल्वर से नवाजा गया था, एक बार फिर से 2026 में उन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। गोज टू शो हर कंप्लीट डोमिनेंस इन वुशू इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी विच शी obviously earned after a hard fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, hame pata hai it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport, but we have Roshi Bina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
2: देखिए individual round में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी athlete ने जो कारनामा दिखाया है उनमें वो सबसे आगे हैं, जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े और सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने जो अपनाया एक घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिल-ए-तारीफ है।
1: राइट एंड नाउ अ क्विक अपडेट ऑल्सो कमिंग इन फ्रॉम शूटिंग, जहां आपको बता दें कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में, वो है मिक्स टीम स्केट के फाइनल्स के थ्रू, बिकॉज इसके अंदर आपको बता दें द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनाज धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्केट शूटिंग कॉम्पिटिशन एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड, गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. कतर, साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर है ये तीनों देश, चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था, तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स. ये इवेंट 11:15 सुबह शुरू हो चुका है, इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद, यानी दोपहर 12:30 आपको इसमें बताएंगे क्या हुआ. फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत. वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट. थैंक यू सो मच, गुड बाय.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे सारा दिन.
4: এশিয়ান গেমসের আপডেট আপনারা শুনলেন, আমরা ফিরে এলাম কিন্তু গান্দুরিয়ায় অম্বালিকা এবং মৌসুমী গানের ডালি নিয়ে.
5: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গান্দুরিয়া 107 এফএম রেইনবোতে. গান্দুরিয়া গান্দুরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন.

0: for the Asian Games 2026 update.
1: Warm welcome to all the listeners of Akashwani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए एशियन गेम्स 2024 की लेटेस्ट अपडेट दोपहर 12:30 बजे. इंतजार का सफर थोड़ा लंबा रहा आज के इस इवेंट के अंदर, लेकिन फाइनली वो सफर आकर समाप्त हुआ. मैं बात कर रही हूँ शूटिंग में. भारत की मिक्स्ड टीम्स की फाइनल में हमारे भारतीय शूटर्स अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया. जी हाँ, अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस पुट अप बाय द टू इंडियन शूटर्स इन द मिक्स्ड टीम्स की फाइनल्स, अनंतजीत सिंह नरूका एंड परिनाज धालीवाल. एंड दे हैड ऑल द रीजंस टू स्टैंड टॉल एंड प्राउड फॉर देयर एफर्ट्स, बिकॉज डिस्पाइट टाइंग विद कोरिया एट 44 पॉइंट्स फॉर द नंबर टू स्पॉट यानी दूसरे स्थान के लिए, दे हैव टू सेटल विद द ब्रॉन्ज आफ्टर द एंड ऑफ द सिक्स सीरीज सिक्स ओइंग टू अ लोअर स्कोर इन क्वालिफाइंग राउंड. जी हाँ, बिकॉज द स्कोर्स ऑफ द इंडियन शूटर were low in the qualifying round, hence they couldn't stand to be in competition for the second spot finish. But nonetheless, the effort of Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhalwal in itself is huge, commendable and appreciable. So here's to the Indian shooters and to the Indian men's teams keep final events, which concluded with the bronze medal for India.
2: Yeah, और कुल पदकों की संख्या 7-15 भी हो गई है. उधर स्क्वाश से भी अच्छी खबर आ रही है. तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, हम आपको बता दें, और अभय भी राउंड 16 में पहुंचे हैं. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश के विमेंस सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. उन्होंने सिंगापुर की केई गहन को 3-8 से पराजित किया. मेन सिंगल्स इवेंट में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली. वीर चित्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ पहला गेम 11-19 जीता था, 11-9 से माफ कीजिएगा जीता था, जिस समय हम आए थे स्टूडियो. और उधर इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने सिंगापुर की ओ यू योंग वाई यन को 3-0 से हराया. तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-15, 11-7 से जीता और इस जीत के साथ ही अनाहत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. तो स्क्वैश में आज सुबह से ही अच्छी खबरें आ रही.
1: जी, और क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है तो उसको मैं बरकरार रखती हूँ. कबड्डी की दुनिया से भी अपने श्रोताओं का मैं लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि एज वाज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वाज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम. इंडिया सिक्योर्ड अ 37-21 विक्ट्री टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स एज द टॉप रैंक्ड टीम. इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत को कबड्डी की दुनिया से अब एक मेडल तो डेफिनेटली तय हो ही गया है. अब वो कौन से रंग का होगा शबाब, थोड़े दिनों में या कह सकते हैं थोड़े पलों में पता चल जाएगा कुछ घंटों बाद कल तक, लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी इज दैट
2: रंग तो वही स्वर्णिम होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है. हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. तलवारबाजी में भी काफी उम्मीद थी भारत को, लेकिन खास करके भवानी देवी महिला वर्ग में, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा. राउंड ऑफ 16 में वो हारी है और ये जो साबरे में राउंड 15 का ये मुकाबला था, राउंड ऑफ 16 का कहते हैं, उससे वो बाहर हो गई. जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन की रॉय शूपी ने 15-5 से उन्हें पराजित किया.
1: राइट, और आपको बता दें आज दिन की शुरुआत हुई थी रोइंग की दुनिया से, जहां पर हमें सबसे पहले मेडल्स की अनाउंसमेंट्स आज भारत के एंगल से मिले थे. मेंस डबल्स कल्स फाइनल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था, जहां पर हमारे रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने फिनिश किया था थर्ड स्पॉट पर इन द मेंस डबल्स कल बाय ऑब्वियसली टाइमिंग अ स्कोर ऑफ 6:13.25 टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल, फिनिशिंग जस्ट 3.48 बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट वी रूदी एंड नियर ऑफ चाइना. यानी बहुत ही छोटे मार्जिन से

0: हम सिल्वर या स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए शबाब, लेकिन वी स्टिल मैनेज टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ द डे टुडे। सो हियर्स टू आवर टू रोअर्स सतनाम सिंह एंड सलमान खान फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन रोअर्स एंड मेकिंग देम फील प्राउड।
1: बहुत सवेरे उन्होंने खुशखबरी सुना दी थी हम लोग को। उधर क्रिकेट प्रेमियों को भी इंतजार था कि मेंस क्रिकेट शुरू एशियन गेम्स में हो रहा है, तो जी हाँ उसकी शुरुआत हो गई, उसका पहला मुकाबला भी हो गया और पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता। मेजबान जापान को 48 रनों से उन्होंने पराजित किया। ग्रुप ए के इस मुकाबले में अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे, जवाब में जापान 81 रन बना सका।
0: जी और हॉकी में आपको बता दें कि मेंस हॉकी पूल ए एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है। भारत इज अप अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर भी भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है उनकी अपोनेंट साउथ कोरिया के ऊपर, बिकॉज थर्ड क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने बहुत स्ट्रांग लीड बना लिया। 6-0 से इस समय भारत आगे है। साउथ कोरिया हैज एन अपहिल टास्क टू मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम। भारत की तरफ से शीलानंद लाखरा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, दिलप्रीत सिंह और इन चारों कहना चाहिए हॉकी प्लेयर्स ने भारत के लिए गोल दागे हैं, जिसमें से एक तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था जो हरमनप्रीत सिंह ने करा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी कमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग स्टार्ट बाय द इंडियन हॉकी प्लेयर्स अर्ली ऑन अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ही इज होपिंग कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम खुशखबरियों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सबके साथ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत। वी विल ज्वाइन बैक वंस अगेन एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स 2026। Thank you.
2: Gaane Baju on the radio. Shuncho 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi. Kalo Joy Bangla Ganer Dhara Chhuye Jak Mon. Shunchen Gaan Doriya 107 FM Rainbow Te. গান্দরিয়া গান্দরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।
3: দিল্লি থেকে শুনছিলাম আমরা এতক্ষণ এশিয়ান গেমসের আপডেট। এবার আমরা আবারও ফিরে এলাম গান্দরিয়া নিয়ে। অম্বালিকার মৌসুমী রয়েছে আপনার সঙ্গে 107 FM রেইনবো। বৃহস্পতিবারের গান্দরিয়া মানে ফোক সুরে আমরা ভেসে যাচ্ছি।

0: गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे शबाब अनवर। घड़ी में हो गया है इस समय 1:30 और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए एवरी आवर अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। क्योंकि दोपहर के 1:30 आज के दोपहर की शुरुआत अपडेट्स की हम करते हैं खुशखबरी के साथ। क्यों शबाब?
2: बिल्कुल, खुशखबरी ये है कि भारत ने मेन्स हॉकी में मजबूत टीम मानी जाने वाली इस ग्रुप के साउथ कोरिया को बड़े आराम से 8-2 से पराजित कर दिया है। और इस टूर्नामेंट में पूरे अगर कहा जाए एशियन गेम्स के इतिहास में ये अब तक साउथ कोरिया पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। एशियन गेम्स में इससे बड़ी जीत भारत ने अब तक हासिल नहीं की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मुकाबले हुए थे अपेक्षाकृत आसान टीमों के विरुद्ध भारत बहुत बड़े अंतर से जीता था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि असल परीक्षा तो कोरिया के साथ होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया है कि कितनी तैयारी के साथ आए हैं अपने खिताब की रक्षा करने के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि टीम इंडिया ने पूल ए में यह लगातार तीसरी जीत हासिल की और जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में वो चोटी पर है।
1: जी, और थोड़ी सी आपको खबर एक और देते हैं बॉक्सिंग की दुनिया से, जहां मेरे पास ज्यादा खुशखबरी वाली न्यूज तो नहीं है, लेकिन वेल इट्स एन अपडेट दैट वी हैव टू गिव यू कि बॉक्सिंग में सुमित किंदू का जो मुकाबला था 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 में, वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम, वो फिलहाल उनको उनसे फॉरफीट कर लिया गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सुमित की जब शुरुआत हुई थी उस मुकाबले में, ही लैंडेड बिग पंचेस अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट। द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 एंड उसके बाद सेकेंड राउंड भी स्प्लिट डिसीजन से भारतीय बॉक्सर सुमित कुंदू के ही फेवर में गया था विद द डिसीजन ऑफ 3-2। बट डिजास्टर स्ट्रक जस्ट सेकेंड्स इनटू द थर्ड राउंड एज सुमित सफर्ड अ सीवियर नी इंजरी, स्लिपिंग एंड हॉबलिंग बिफोर द मेडिकल ऑफिसर स्टेप्ड इन टू स्टॉप द बाउट। वेल, द ऑफिशियल सस्पेक्टेड एन ACL इंजरी, ब्रिंगिंग अ हार्ट ब्रेकिंगली अब्रप्ट एंड टू हिज कैंपेन, एंड एज अ रिजल्ट इट कुडंट हैव बीन मच मोर वर्स फॉर द इंडियन बॉक्सर सुमित कुंदू, बिकॉज इराक्स अली अल सरे एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑटोमेटिकली।
2: यह साक्षी, एक रोइंग से खबर आ रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अपने श्रोताओं को अपडेट देना बहुत जरूरी है। भारत के कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान और बलराज पवार की टीम पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स के जो फाइनल मुकाबले थे उसमें 5वें स्थान पर रही। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन सफलता ज़्यादा मिली नहीं। चीन ने इस मुकाबले का गोल्ड मेडल जीता, इंडोनेशिया दूसरे, उज्बेकिस्तान तीसरे और जापान चौथे स्थान पर आए।
1: जी, और स्विमिंग में भी नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टू गिव एट दिस आवर, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी विटनेस्ड एक्शन इन मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स, मेंस 4x200 फ्री स्टाइल रिले हीट्स एंड मेंस 800 मीटर फ्री स्टाइल। इन तीनों इवेंट्स में एक एक करके आपको बताते हैं। मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में भारत की तरफ से बेनेडिक्टन बेनिस्टन फिनिश्ड 5th इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल डायरेक्टली बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स। ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। मेंस 4x200 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स के अंदर बेनेडिक्शन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश माने और गितेश शाह वो एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर 6 टीम रेस इवेंट। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8:02.52, टचिंग द वॉल 5.13 बिहाइंड वियतनाम्स ग्यूइन होय हवांग। एज अ रिजल्ट आर्यन नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट ऑल्सो।
2: या बिल्कुल, और स्क्वैश में भी आज का दिन अच्छा रहा है। आज इस मुकाबले भी शुरू हुए, तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेन सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सिंगापुर की वेई रहन को 3-1 से हराया। और मेन सिंगल्स में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई। और चोत्रानी ने अगर देखा जाए तो मलेशिया के संजय जीवा को 2-1 से हराया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया था और उन्होंने सिंगापुर की ओ यी योंग वाई इयान को 3-0 से हराया था। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-5, 11-7 से जीता था। तो आज जो कुछ अच्छे मुकाबले भारत के लिए हुए हैं उसमें स्क्वैश भी शामिल है।
1: ऑफ कोर्स, इनफैक्ट शायद इकलौता ऐसा कह सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में स्क्वैश हमें गुड न्यूज लेके आया है, बिकॉज वुशू से भी हमें गुड न्यूज मिली ही मिली है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रोशिबिना देवी गॉट अस द कोवेटेड

0: silver in the 60 kilogram category in Wushu, and thereby she was able to score a hat-trick of medals in three Asian Games, 2018, 2022 or 2026. A hat-trick of medals coming for Roshibeena Devi. And I think, Shabab, we also have some news to share from the world of fencing for our listeners today.
1: Yeah, bilkul. And the biggest thing is that there was a little bit of a problem. Bhavani Devi had a little bit of राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर रही है क्योंकि उन्होंने 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हराया था और उसके बाद से मुकाबले से बाहर होना थोड़ा चिंता की बात
0: है। राइट, वी विल कैरी ऑन विद दीस अपडेट्स ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज दिन की शुरुआत भी मेडल्स के साथ ही हमारे लिए हुई थी, बट वी विल बी कमिंग विद दैट, जिसकी वजह से भारत की पोजीशन अगर मेडल टेबल पर देखे तो 14th पोजीशन पर अब बन गई है। 15 मेडल्स कुल मिला के भारत को मिले, जिसमें से एक है गोल्ड क्रिकेट की दुनिया से, महिला क्रिकेट ने दिलवाया, 6 सिल्वर है जिसमें 4 शूटिंग, 8 वेट लिफ्टिंग और 1 वुशू से आया है, और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स, 4 शूटिंग से, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन और 1 रोइंग, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 15 मेडल्स। होप स्टिल रेस्टिंग अ लॉट ऑन द इंडियन एथलीट्स, और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय एथलीट्स और प्लेयर्स भारत का नाम और रोशन करवाए और मेडल टेबल में धीमे धीमे करके भारत और ऊपर आए। ऑन दैट नोट, राइट नाउ इट्स शबाब एंड मी साक्षी सेइंग गुड बाय टू आवर लिसनर्स। वी विल जॉइन बैक एट 3:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: This is Akashvani Kolkata. Here is the weather warning. Fisherman's warning for West Bengal. Wind warning. Squally and with speed reaching 55 to 65 km per hour, gusting to 75 km per hour is prevailing over west, central and adjoining northwest Bay of Bengal and along and north, south, Odisha, north, Andhra Pradesh, and likely to continue till noon and become 50 to 60 km per hour, gusting to 70 km per hour in the evening of today, the 24th September. It is likely to become 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour from midnight of today, 24th September, till morning of 25th September, and decrease gradually thereafter. Squally wind with a speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour is likely along and off of West Bengal coast till 25th September. Very rough to rough sea condition is prevailing over west, central and northwest Bay of Bengal till noon and likely to become rough from evening of today, the 24th September, till morning of 25th September and improve gradually thereafter. Sea conditions likely to be rough to very rough along and off West Bengal coast till 25th September. Fishermen warning. West Bengal, fishermen are advised not to venture into the sea along and off West Bengal, Odisha coast, North Bay Bengal, West Central Bengal of Bengal till 25th September. That is the end of the announcement.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर होगी 107 FM रेनबो पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ, तीन कदर का जहाँ होती है तड़कती भड़कती बॉलीवुड की ताज़ी तरारी खबरें और साथ ही साथ ज़बरदस्त गाने भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हारी संधू और किरण बाजवा के इस गाने से।

तो दोस्तों जितना वाओ ये पहला ट्रैक था उतना ही पहली खबर हमारी पहला जो तड़का है वो भी उतना ही वाओ है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में है। आज फिल्म से रणबीर कपूर का पहला लुक भी जारी हो चुका है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। जारी किए गए पोस्टर में रणबीर पुराने दौर के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गोल चश्मा, मूंछ और हल्के रंग की पोशाक पहनी है, जबकि उनके हाथ पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी और रणबीर के किरदार को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके पहले लुक ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी। लव एंड वॉर अगले साल रिलीज होने वाली है। और दूसरी खबर हम बताएंगे उड़ता तीर के बारे में। जी हाँ, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में भूत बंगला से।

तो दोस्तों दूसरा तड़का है उड़ता तीर से। जी हाँ, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आने वाली फिल्म उड़ता तीर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म एक स्पाई कॉमेडी है जिसमें आयुष्मान एक ऐसे पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभा रहे हैं जो भारत में एक मिशन के दौरान अपनी याददाश्त खो देता है। फिल्म का निर्देशन आकाश ए कौशिक ने किया है और उनकी बतौर निर्देशक पहली फिल्म है ये। ट्रेलर में जासूसी, पहचान की उलझन और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म में आयुष्मान और सारा के अलावा कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। उड़ता तीर 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है और कैसा होगा उसके बारे में तो हम बताएंगे आपको जब रिलीज हो जाएगी।

दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक लोकप्रिय क्विज शो में अपनी और जया बच्चन की शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। एक कॉन्टेस्टेंट से बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन से उन्होंने पूछा था कि उन्होंने जया बच्चन के परिवार से शादी की बात कैसे की थी। इस पर उन्होंने बताया कि दोनों ने पहले खुद शादी करने का फैसला किया और परिवारों को औपचारिक रूप से बताने की प्रक्रिया बाद में हुई। अमिताभ और जया बच्चन की शादी को अब कई दशक हो चुके हैं, लेकिन उनके पुराने किस्से आज भी दर्शकों की दिलचस्पी का हिस्सा बने हुए हैं। और ऐसे ही चलिए, जब लव स्टोरी की बातें हो रही है, शादी की बातें हो रही, तो एक रोमांटिक गाना क्यों ना सुन लिया जाए अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में गहरा हुआ।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, 107 FM Rainbow पर परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खेती किसानी में बिजली और डीजल की जरूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन अगर खेतों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा का हिस्सा सूरज से मिलने लगे तो किसान की लागत कम करने या स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। इसी सोच से जुड़ी है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर से ऊर्जा से जोड़ना है और इसके तहत किसानों के लिए सोलर पंप लगाने और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पंप पर निर्भरता अधिक है और ऊर्जा एक वैकल्पिक रास्ता बन सकती है। योजना के अलग अलग घटकों के जरिए विकेंद्रीकृत और ऊर्जा संयंत्र सोलर कृषि पंप और मौजूदा कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किसान सिर्फ ऊर्जा के उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था का हिस्सा भी बन सकते हैं। हालांकि योजना के तहत मिलने वाले सहायता, किसान का योगदान और आवेदन की प्रक्रिया राज्य तथा संबंधित घटक के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए इच्छुक किसानों को अपने राज्य की कृषि या नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग से आधिकारिक जानकारी लेना जरूरी है। यानी सूरज की रोशनी जो हमारे लिए रोज मुफ्त में उपलब्ध है, वही खेतों के लिए ऊर्जा का एक उपयोगी स्रोत भी बन सकता है। प्रधानमंत्री कुसुम इसी संभावना को खेती से जोड़ने की कोशिश है। ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
1: परियोजना प्रस्तुति के तुरंत बाद हम वापस आ गए हैं तीन का तड़का लेकर और अभी पढ़ते हैं हमारे चौथे तड़के की ओर। अभिनेता और निर्देशक रणदीप हुड्डा ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिले नेशनल फिल्म अवार्ड को अपनी बेटी नियोमिका, पत्नी लीन लैशराम, परिवार एवं पूरी टीम को समर्पित किया है। रणदीप हुड्डा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर का सम्मान मिला है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और निर्देशन के क्षेत्र में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। अवार्ड मिलने के बाद रणदीप ने अपने बेहद प्रोत्साहन देने वाले पल बताया, जहां फिल्म से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया है। तो चलिए इस तड़के के बाद बैक टू बैक दो गाने सुन लिए जाए, सोनू निगम कृष्णांजलि शाह सचिन जगर, और उसके बाद फिर बयानी और हारी संधू की आवाज़ में जबरदस्त गाना।

इसी के साथ दोस्तों तीन का तड़का का आज का आधे घंटे का जो स्लॉट है यही खत्म होता है। इसके बाद आप सीधे सुनेंगे एनसीईआरटी का विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और रहिए 107 एफएम रेनबो के साथ। मिलती हूँ मैं वापस 5:15 पर चाय एंड क्लासिक्स के साथ एफएम गोल पर। उसके बाद फिर 7 बजे से नज़ारा फिल्मों का तो रहेगा ही। तब तक के लिए बने रहिए।

0: अभिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
1: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
0: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
1: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: जी,
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
1: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
1: जी,
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
1: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
1: जी,
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
1: बिल्कुल।
0: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
1: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओ, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
1: जी,
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
1: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
1: जी,
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
1: जी,
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी,
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
1: बिल्कुल।
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044059 पर

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
3: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर को

0: हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली। जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
3: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी,

0: इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी मां के बारे में कहा था,
0: मेरी मां ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।

0: 10,000 बार।
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा,
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह,
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। तो आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का विशेष कार्यक्रम उमंग। अब थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम।

96.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबर प्रयाम संदेश टू सोल्जर शायद के साथ आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा अगर मैं सर विद्यु

0: एथलेटिक्स के अंदर और भी अपडेट्स आते रहेंगे शबाब।
1: और उधर स्क्वाश की बात करें तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसने आज पूरे दिन भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स के स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली शानदार प्रदर्शन करते हुए, जबकि जोशना चिनप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंच गई। जूनियर विश्व चैंपियन और पदक के दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को महज 19 मिनट में 3-0 से यानी कि 11-4, 11-5 और 11-17 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी तय नहीं होगा पदक, ये खास बात है, कुछ इसमें तब्दीली आई है, हम बताएंगे आपको। इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को 39 मिनट में 3-1 यानी के 5-11, 11-4, 11-5, 13-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच ही मुकाबला तय हो गया है, यानी दो भारतीयों के बीच। पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा। कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा, ये खास बात है। तो काफी दिलचस्प रहेगा, एक बार फिर दो भारतीयों के बीच मुकाबला भी हमें को देखने को मिलेगा।
0: तो आज का पूरा दिन स्क्वाश
1: खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया।
0: जी शबाब, नाइसली पुट, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, जहां पर सुमित कुंदू ने आज भले ही अपने पहले दो बाउट्स की अच्छी शुरुआत करी हो, लेकिन तीसरे बाउट में चोटिल हो जाने की वजह से ही गॉट फॉरफीटेड और उनके जो ओपोनेंट थे इराक के अली अलसारे वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए। वहीं पर अगर हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग के एंगल से देखें तो भारतीय महिला बॉक्सर्स का भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साक्षी चौधरी लॉस टू कजाकिस्तान्स अलोआ बाल्केबेकोवा इन द वुमेन्स 51 केजी राउंड ऑफ 16 बाउट एंड एग्जिटेड द कंपटीशन। वहीं पर 65 केजी प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर मिल गया थैंकफुली, व्हिच वाज गॉड्स एंड गिफ्ट, एंड नाउ शी हैज मूव्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। शबाब
1: जी, बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहा है। अब कई और ऐसे खेल रहे जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जिन खेलों में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी भारत को, मुक्केबाजी और निशानेबाजी, उसमें उतना वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी।
0: जी ऑफकोर्स निराशाजनक रहा, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आज प्राप्त हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट द मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट दैट हैपेंड व्हिच गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे, शूटिंग बीइंग दैट सेविंग ग्रेस, क्योंकि इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ओवरऑल अगर शूटिंग की बात करें। लेकिन अभी आई विल कम बैक टू एथलेटिक्स दोस्तों, बिकॉज एथलेटिक्स में आज बहुत इवेंट्स हैं। तो हेप्टाथलॉन की अगर हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स हेप्टाथलॉन आफ्टर 4 इवेंट्स क्या स्टैंडिंग है, तो भारत की पूजा इस वक्त बनी हुई है 8वें स्थान पर, और वहीं पर अनामिका कोजिन जपारमविल भी बनी हुई है 9वें स्थान पर। नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो फातिमा है, और नंबर 2 पर काई जुआन है। तो अभी ये कहना कि भारत यहाँ से कैसे क्वालिफाई करेगा या फिनिश ऑफ करेगा, ये बहुत अर्ली ऑन होगा, बिकॉज इसमें अभी और इवेंट्स एड ऑन होंगे, एंड देन वी विल कम टू सी दैट इन टोटैलिटी हाउ डज इंडिया स्टैंड, स्पेशली वेदर इट्स इंडियन वुमेन और इट्स इंडियन मेन, व्हेन इट कम्स टू द टेबल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 में भारतीय मेन और भारतीय वुमेन एथलीट्स फिनिश कर रहे कि नहीं। लेकिन 4 इवेंट्स की समाप्ति पे हेप्टाथलॉन के रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे, और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि इस वक्त किस तरह की टेबल स्टैंडिंग्स यानी मेडल टेबल स्टैंडिंग क्या बनी हुई है भारत की। तो मेडल टेबल पर इस समय भारत है 14th पोजीशन पर, ही इज होपिंग दैट वी मूव ऑन द मेडल टैली, लेकिन अभी के लिए दैट इज ऑल दैट शबाब एंड मी साक्षी हैड इन दिस अपडेट। वी विल जॉइन यू बैक एट द 6:30 PM लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू।
2: गाने बाजू ऑन ए रेडियो सुनछो 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi.
3: Shuncho, Cafe Kolkata,
4: Cafe Kolkata,
3: 107 FM Rainbow Te, Cafe Kolkata,
4: Cafe Kolkata.
5: স্টুডিও ক্লকে এখন বাজে 5:37, আর আমি দেবারতী তোমার সঙ্গে রয়েছি ক্যাফে কলকাতায়। আর এখন আর কয়েকটা

0: कमरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती।
1: FM Rainbow Team 3 ek

0: एशियाई खेलों में क्या कुछ हो रहा है जापान में, उसकी ताजा तरीन रिपोर्ट के लिए हम आपको लिए चलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के स्टूडियोज। भारत के खिलाड़ी वहां पर अपना सर्वस्व झोंकने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लिए पदक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं एशियाई खेलों में क्या है कुछ ताजा समाचार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी ने बोला।
2: वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है शबाब अनवर एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंग टू यू इन द 6:30 लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 इज फ्रॉम द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स। यस, वी हैव आवर इंडियन एथलीट सीमा who went on to get the bronze medal for us and for herself, clocking a timing of 32 minutes 50.05 seconds. She finished on the third spot right behind Bahrain, who grabbed the gold medal, while Japan's Tanaka Nozomi grabbed the silver medal. Good news coming in from the world of athletics, as was much expected. We are hoping that these medals go on increasing because athletics is one of the big hopes that India is going to be relying on. In the other news from athletics, hum aapko bata de ki women's triple jump ke andar Asha Elango missed out on a medal. Ji ha, Asha Elango could not improve. Unka jo pehla attempt tha, it was of 13.43. Second one was invalid. Third attempt was 13.83. Fourth was 13.63. Fifth was 13.65. And sixth was 13.59. अब आपको ये बता दे कि जो because she missed out on a final, what was the reason for that? It was because she was tied with China's Wai Li, but still with a best of 13.83. But Yai Li had a better second best. जो यहाँ पर आशा इलांगो का second best था, वो invalid consider किया गया था, जबकि China की Yai Li का second best was 13.83 meters, and hence the Chinese went on to get the bronze medal, while Asha Elango from India just missed out by a whisker from script. History in women's triple jump today, but maybe better luck next time in life. Definitely. Ab baat karte hain women's heptathlon ki in short put, where Pooja moved on to the fourth spot after registering a throw of 11.44 meters in her third attempt. I will carry on with these updates in athletics, but right now it's also time for me to cue back in Shabab, who has some updates to share with all your lovely people. Yes,
3: bahut achi khabar aapne shuru mein sunayi Seema Kumari ki, jinhone kaanse padak jeeta, aur ab aise khel ke bare mein jante hain jinka ye muqabla shuru hone se pehle padak ki puri सभी को होती है, वो खेल कबड्डी है, आप जानते ही हैं। तो आज के जो मुकाबले कबड्डी में समाप्त हुए हैं, उसमें दोनों वर्गों के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है। पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय महिला टीम कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार

0: नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम सुबह 10:45 पर थाईलैंड से मुकाबला करेगी। और एक यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक अपसेट हुआ है, हालांकि उसका संबंध भारत से नहीं है। टेबल टेनिस का वो की स्पर्धा है और उसमें 1990 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चीन चैंपियन नहीं बना है। इसमें जापान में आप जानते हैं कि मेंस टीम टेबल टेनिस फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। मेजबान टीम ने गोल्ड छीन लिया है। मेजबान जापान ने चीन को 26 साल लंबे दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस हार के साथ चीन 1990 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के मेंस टीम टेबल टेनिस चैंपियन नहीं बन सका है। तो ये एक उलटफेर बहुत बड़ा हुआ टेबल टेनिस में।
1: हाँ जी शबाब, एंड कैरिंग ऑन दी अपडेट्स ऑफ एथलेटिक्स, आपको ये भी बता दें, आपको हमने ये तो बता दिया वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स में सीमा कुमारी ने आज ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स की हीट वन में अनामिका ने फिनिश किया चौथे स्पॉट पर विद द रिजल्ट ऑफ 14.80। वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स हीट टू में पूजा फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द रिजल्ट ऑफ 14.61। सो हेप्टाथलॉन के सारे इवेंट्स एक साथ जब टोटल किए जाएंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, आफ्टर दैट व्हाटएवर द टोटल स्टैंड्स विल बी द क्यूमुलेटिव फिगर टू डिसाइड कि कौन सा देश फिनिश करेगा इन द टॉप थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये रिजल्ट्स हम आपको कल ही बता पाएंगे बिकॉज हेप्टाथलॉन के कुछ इवेंट्स कल भी होने वाले दोस्तों, एंड आफ्टर दैट विल बी द फाइनल मेडल टैली काउंटिंग एंड ऑल्सो द टोटल नंबर्स काउंटिंग टू विच विल डिसाइड विच कंट्री स्टैंड्स ऑन विच पोजिशन। एंड अ क्विक वन ऑल्सो इन एथलेटिक्स इज दैट अनिमेश कुजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमी फाइनल एट द एशियन गेम्स। वेल अनिमेश कुजूर हैड अ टाइमिंग विच क्लॉक्ड ऑफ 10.36 सेकेंड्स, वेल गुरिंदर वीर Singh had a timing of 10.38 seconds. We'll have to see how that develops on the athletic front. And some good news that has come will leave us with the smile of the 10,000 meter finals in women's. Shabab, jo humne bataya.
0: Aur ek achhi cheez aaj bhi rahi hai ki bahut logon ko ye ummeed thi ki shayad Korea se muqabla hockey mein kada ho, lekin Bharat ne use bhi nikal liya aasani ke saath 8-2 se.
1: Haan ji, hockey ke andar to dabdaba raha hi hamesha se Bharat ka hockey, kabaddi, these are the sports where we should be counting in the medals. And of course, not to forget cricket also, the men's cricket also, the Indian representation which shall be starting in the next few days also. But women's world final ki baat kar lete hain. Aaj usme kya hua? Pranithi Naik finished 6th in the women's vault, a disappointing performance coming in over there. More updates will carry on in athletics in the next 1 hour also. Hum apne sare listeners ko bata de, filhal aap sabke chehron pe ye choti si achi hansi chhod kar ja rahi hai ki Seema Kumari ne bronze grab kar liya athletics mein in women's 10,000 meters finals. We'll join you back at the 7:30 update. For now, it's Shabab and me Sakshi saying goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 107 FM रेनबो पर। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7:04 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम छायालोक।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: और पुराने गीतों का ये सिलसिले में, सफर में आज हम ले चलेंगे आपको नजारा फिल्मों का दिखाने।
3: नजारा फिल्मों का।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पापी और आप सुन रहे हैं नजारा फिल्मों का। आज जरा नजर डालते हैं हिंदी सिनेमा के उस हिस्से में जिसके बिना शायद हमारी फिल्में कहानियां इतनी दिलचस्प नहीं होती। जी हां, आज बात होगी उन किरदारों की जिनकी एंट्री होते ही कहानी का माहौल बदल जाता है, जिनके सामने हीरो को अपनी सारी अच्छाई, सारी हिम्मत, सारी समझदारी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिनसे हमें नफरत करनी थी लेकिन जाने क्यों पर्दे से उनके जाते ही हमें उनकी कमी भी महसूस होने लगती है। आज हमारा सवाल है, भी बड़ा मजेदार है, कि आखिर फिल्मों में हीरो के बाद सबसे ज्यादा याद किसे रखा गया? कई बार जवाब होता है विलन का, तो आपका जवाब क्या है? आपका फेवरेट विलन कौन है? हमेशा हम पूछते हैं कि फेवरेट हीरो कौन है, पर मेरा सवाल आज है कि आपका फेवरेट विलन कौन है? जी हाँ, हिंदी सिनेमा की दुनिया में खलनायक का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। एक समय था जब विलन यानी काला को डरावनी हंसी, हाथ में बंदूक, चेहरे पर गुस्सा। फिर समय बदला और विलन के कपड़े बदल गए, लेकिन उसकी भाषा बदल गई, उसकी अपराध करने के तरीके भी बदल गए और सबसे बड़ी बात, उसका कैरेक्टर भी बदल गया। कभी वो डाकू बना, कभी तस्कर, कभी साहूकार, कभी जमींदार, कभी बिजनेसमैन और कभी ऐसा शख्स जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था लेकिन अंदर से कहानी का सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन इन सारे किरदारों में एक चीज कॉमन थी, उन्हें निभाने वाले कलाकार। क्योंकि विलन लिख देना आसान हो सकता है, लेकिन विलन को ऐसा बनना कि दर्शकों बाद भी लोग उसका नाम याद रखें, ये बहुत मुश्किल काम है। और इस सफर की शुरुआत करें तो ऐसा नाम सामने आते ही है जिसे हिंदी सिनेमा में पहले विलन के रूप में देखा, बाद में उसे कलाकार ने अपनी छवि को इतने अलग अलग रंगों में बदल दिया कि भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बने। जी हाँ, प्राण साहब। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा पहला गाना।
4: तुमने वो क्या देखा

0: और इस गाने के साथ साथ हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग पपी जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नजारा फिल्मों का में।
1: थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ आपका प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्योंकि आपका प्रोग्राम के आना बहुत सौभाग्य के इंसिडेंट है।
0: थैंक यू।
1: जो फिल्म है हम पांच फिल्म है 1981 का, लता मंगेशकर और अमित कुमार जी का गीत रजनीकांत के कंपोज किया और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत एंड कास्ट है मिथुन चक्रवर्ती दीप्ति नवल और भी बहुत सारे पाठित है। और गाना है उठा ले घूमता और आज का जो ट्रॉफिक है उसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये विलेन वही होता है जिसके लिए हम पर हम सब गुस्सा होता है क्योंकि वो उसको रियल लाइफ के जितना ही अच्छा हो उतना ऊपर मेरा गुस्सा आना चाहिए, इसलिए मेरा सबसे फेवरेट विलेन है अमरीश पुरी।
0: ओके ओके,
1: वन ऑफ द बेस्ट विलेन
0: जी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया सबको।
1: मुनीरुद्दीन बोल रहा हूँ, दुखी छात्र
0: जी। मुनीरुद्दीन दा, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अमरीश पुरी आपके हैं फेवरेट और हम में से कईयों के आई एम श्योर कि अमरीश पुरी फेवरेट होंगे क्योंकि वो एक्टर ही ऐसे थे।
1: हाँ, फेवरेट एक्टर भी होंगे, उसकी अच्छा एक्टिंग भी किया
0: जी।
1: जैसे दिल जले अच्छा भी एक्टिंग किया वो कुछ सारे फिल्म में, लेकिन बहुत सारे फिल्म में विलेन है
0: जी। तो चलिए फिर आपका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना सुन लेते हैं काजानो में।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू
0: सो मच, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, गुड नाइट। तो ये थे मुनीरुद्दीन लश्कर दक्षिण साकराइल से और सुनना चाहते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर के पास में ये गाना। तो चलिए सुन लेते हैं हम पांच फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, हम 5 फिल्म से सुन रहे थे आप यह गाना और अमरीश पुरी के बारे में बात हो रही थी। भाई, अमरीश पुरी ने विलन को एक अलग ऊंचाई दी है। उनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि कई बार वो सिर्फ एक शब्द बोलते और कैरेक्टर की ताकत महसूस हो जाती। लेकिन उनके करियर की खास बात सिर्फ उनकी भारी आवाज़ नहीं, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके चाल और उनके एक्सप्रेशन सब कैरेक्टर के हिसाब से बदलते थे। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो याद कीजिए। मोगैम्बो एक विलन है, लेकिन उसके अंदर थिएट्रिकलिटी भी है। वो सिर्फ अपराधी नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। उसके जेस्चर्स बड़े हैं, उनकी बातें बड़ी हैं, उनकी

0: एग्जीबिशंस भी पड़े हैं और फिर आइकॉनिक अंदाज मोगैम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग कैरेक्टर की पहचान बन सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण शायद मुश्किल है। मोगैम्बो का कैरेक्टर डराती भी थी और एंटरटेन भी करती थी और यही बात हमें विलेन की सबसे दिलचस्प खूबी तक ले जाती है, क्यों है ना। ऐसे में हमारे अपना फेवरेट लेकर हमारे अगले जो कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो नमस्ते, मैं बरगर से गिरजापुर पर हावड़ा से प्रशांत धवल बोल रहा हूँ।
0: जी प्रशांत दा, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ सब ठीक ठाक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कैसे हैं, आप ठीक है ना?
1: हाँ हाँ ठीक है।
0: चलिए बताइए आपके फेवरेट विलन कौन है?
1: मेरा फेवरेट विलन है अजीत।
0: ओके,
1: भोजपुरी भी मेरे खास था मगर अजीत भी मेरे बहुत अच्छे लगता है क्योंकि उसे जंजीर फिल्म में जो अभिनय किया था उसके बाद यादों की बारात हो या राम और शाम हो या विश्वनाथ फिल्म में तो डायलॉग था सारा दुनिया मुझे लायन के नाम से जानते हैं, मुझे अजीत बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यादों की बारात में एक सीन है जो जूता दो, एक तो 9 नंबर का था, एक मिनट 11 नंबर का था, दो टाइप का जूता पहनता था
0: जी,
1: वो फेमस था उस टाइम तो 70 के दशक का अजीत का विलन। तो मुझे जंजीर फिल्म से एक गाना सुनना है, दीवाने हैं दीवानों का नजर था ये।
0: जी बिल्कुल, चलिए सुनाते हैं आपको। थैंक यू सो मच, किसी को
1: मोहम्मद रफी, अल्लाह का मंगेतर
0: करता। जी जी जी जी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, वापस मुलाकात होगी आपसे किसी दिन। ओके ओके बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों बात हो रही थी अजीत के बारे में, उनके फेवरेट हैं अजीत जी। हाँ, उनकी आवाज़ में तो ठहराव था ही, उनके बोलने का तरीका इतना विशिष्ट था कि उनके डायलॉग डिलीवरी को इमिटेट करना भी अपने आप में एक फिल्मी एक्सरसाइज बन गया था। और उनके किरदारों की दुनिया भी खास थी, महंगे कपड़े, शानदार जगह, आसपास अपने लोग, अपने सामने बैठा कोई ऐसा आदमी जो पूरी कहानी को पर्दे के पीछे नियंत्रित कर रहा हो, यानी विलेन की दुनिया भी एक अलग सिनेमा बन चुकी थी। और यहीं से हमें हिंदी फिल्मों की एक मज़ेदार परंपरा भी दिखाई देती है कि विलेन का अपना अड्डा, हीरो का घर होता है विलन का अड्डा, हीरो के दोस्त होते हैं विलन के चमचे, हीरो के पास कोई भावनात्मक कहानी होती है पर विलन के पास कोई बड़ी योजना, और हीरो को हमेशा पता नहीं होता कि विलन अगला कदम क्या उठाने वाला है, दर्शक को पता होता है और यही सस्पेंस मजा भी देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए।

0: तो ऐसे में अपने फेवरेट विलन के साथ हमारे अगले कॉलर से चलिए बात कर लेते हैं, कौन है जान लेते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नजारा फिल्मों का। जी
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बोल रहे हैं
0: जी। जी
1: तो राजा मुराद विलेन अच्छा लगता है, तो उम्र से भी अच्छा ही लगता है। तो राजा
0: का
1: गाना सुना दीजिए हमको।
0: ओके,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच।
1: अच्छा भी हो रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल चलिए सुनाते हैं। ठीक है, वापस बातें होंगी आपसे जरूर। ओके बाय। तो चलिए राम तेरी गंगा मैली से इसका टाइटल ट्रैक सुन लेते हैं सुरेश वाडकर एवं साथियों की आवाज़ में। और फिलहाल इसके बाद 7:30 बजे के से 5 मिनट तक बिल्कुल एशियन गेम्स की अपडेट्स हम लाइव अपडेट्स सुनेंगे, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। फिलहाल चलिए देखते हैं।

0: अपडेट के लिए आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शाबाब अनवर एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे इज कमिंग एंड हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। जी हां, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे शुड आई बी सेइंग इज दैट इंडिया वेंट ऑन टू विन द सिल्वर मेडल इन 4x400 meter रिले मिक्सड इवेंट। द क्वार्टेट ऑफ पूवम राजू, विशाल थिनरासु, विद्या रामराज एंड मनु टीएस who were representing India made sure that India finished with that coveted silver. At one point it looked that we might have to suffice with the bronze, but we were able to get that coveted silver for us. And also let me just inform all our listeners over here that India have already won the gold in 2018 and also the silver in 2022, and now we've been able to make sure that we maintain that silver once again into the 4x400 meter relay mixed event. Shabab,
3: yeah bilkul, aur ab samay aa gaya hai shayad पांचवा छठा दिन के बाद के लगातार जो भारतीय एथलीट हैं वो अपना दबदबा बरकरार रखेंगे सभी खेलों में। कल कबड्डी का दोनों सेमीफाइनल है, लगभग पदक पक्का कर लिया है दोनों ही टीमों में, और आप जानती हैं कि किस प्रकार से अपने स्वर्ण पदक की रक्षा भारत को करनी है कबड्डी के खेल में। जापान को जिस तरह से अपने अंतिम मैच में हराया है, 50-25 का अंतर था, तो कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है, अगर एक मुकाबले को शायद हम छोड़ दें, जिसमें ऐसा लगा हो कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो कहीं पर कांटे की टक्कर हुई हो। बहुत ही आराम के साथ हॉकी में भी और कबड्डी में भी, हॉकी में देखिए कोरिया से कहा जा रहा था कि शायद कोरिया की टीम जो है थोड़ी सी मजबूत साबित हो, लेकिन कोरिया को हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आसानी से 8-2 से पराजित किया। तो जिन खेलों में हमारे पास अच्छी शक्ति है उधर बहुत अच्छे तरीके से चीजें जा रही हैं।
2: राइट, आई विल गिव अ क्विक अपडेट ऑन ऑल द रिमेनिंग एथलेटिक इवेंट्स आल्सो दैट हैपेंड टुडे, वेयर सीमा कुमारी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक मेडल ऑफ एशियन गेम्स 2026 बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल टुडे। सीमा फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 32:50.05 एंड बैग्ड द नेशंस फर्स्ट मेडल इन द इवेंट इन 16 years। जी हां, 16 साल में पहली बार हमें ये पदक मिला है। अर्लियर आशा लांगो नैरोली मिस्ड आउट ऑन अ हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेन्स ट्रिपल जंप मेडल। शी फिनिश्ड विद द सेम बेस्ट थ्रो एज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बट मिस्ड आउट ड्यू टू अ वर्स सेकंड बेस्ट अटेम्प्ट। वहीं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 meter सेमीफाइनल्स विद टाइमिंग्स ऑफ 10.38 seconds एंड 10.36 seconds रिस्पेक्टिवली। हेप्टाथलॉन में पूजा और अनामिका अनीश are not in the medal positions with 3 more events to go. Kal aur zyada clear ho jayega ki Bharat ki standing kis prakar rahegi medal table mein aur khas taur se athletics ke andar. Rowing ke andar bhi aapko quick update de de, the day started off with a medal first of all that came from the men's double sculls final, jiske andar humne dekha kis tarah se Satman Singh aur Salman Khan ne aaj teesre sthan par men's double sculls mein with a timing of 6 minutes 13.25 seconds ke saath Bharat ko aaj ke din ki early morning shuruaat mein bronze medal दिलवाया था। शबाब,
3: बिल्कुल, शुरुआत तो आज सुबह में अच्छी रही, पहले सिल्वर सबसे पहले, फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिन में ऐसा लगा था कि सन्नाटा सा हो गया है, लेकिन अंतिम समय पर यह सन्नाटा पूरी तरह से चीरते हुए एक तरह से भारतीय एथलीटों ने फिर से जगा दिया है भारतीय खेल फैंस को। एक
2: जी सन्नाटा इतना तो हुआ नहीं था क्योंकि यस, एक साइड पे हमने देखा रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान कैसे उन्होंने हमें ब्रॉन्ज

0: होता है, उसी के साथ साथ वुशु ने भी आज सबसे बड़ी खबर दिन की हमें दी थी, जहां रोशिबिना देवी ने वुमेन 60 केजी फाइनल्स में आज भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया। यस, वंस अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट, शी दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट हैपेंड बिकॉज शी वाज एबल टू गेट अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स। आपको बता दें, ब्रॉन्ज उन्होंने 2018 में कमाया था, उसके बाद 2022 में भी उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था, और अब उन्होंने इस साल के एशियन गेम्स 2026 में हैट्रिक ऑफ मेडल्स कंप्लीट कर लिया। सो अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर द इंडियंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशु। शूटिंग के अंदर शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही थी, लेकिन अंत में चलते चलते हमारे शूटर्स ने मिक्स टीम स्कीट फाइनल्स के अंदर हमें खुशखबरी दिलवाई दी थी, क्योंकि उन्होंने हमें दिला दिया ब्रॉन्ज मेडल, एंड विद दैट समहाउ इंडिया कुड से दैट वी फिनिश्ड ऑफ ऑन अ सैटिस्फाइड नोट। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 15th इस समय, 16 मेडल्स आ चुके हैं भारत के पास, जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। वी आर होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू इंप्रूव इट्स पोजीशन इन द कमिंग डेज इन द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2026। इसके साथ आपको बता दें कि आज की अपडेट्स तो यहीं पर आके समाप्त होते हैं शबाब, लेकिन हम कल सुबह एक बार फिर 9:30 बजे से अपने श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एवरी आवर। फॉर नाउ इट इज शबाब अनवर एंड मी साक्षी मांडवाल सेइंग गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: नजारा फिल्मों का।
2: तो दोस्तों, नज़ारा फिल्मों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इन अपडेट्स के बाद, और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आपके लिए। और बातें हो रही थी नज़ारा फिल्मों का में, फिल्मी विलन्स की। जी हाँ, फेवरेट विलन्स के बारे में बातें कर रहे थे हम अपनी, और श्याम कुमार चंचल जी हमसे जुड़ चुके थे फिलहाल। उनका उन्होंने बताया कि उनके जो फेवरेट विलन है वो है, विलन नहीं, कादर खान बेसिकली अभिनेता उनके फेवरेट हैं, जिन्होंने कॉमेडी भी किया है, जिन्होंने विलन का किरदार भी निभाया है। इनफैक्ट कादर खान हम सबके बहुत ही फेवरेट रहे, बहुत ही अजीज़ रहे हैं। और सुनना चाहते थे कूली फिल्म से एक्सीडेंट हो गया आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज़ में, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

0: तो अमरीश पुरी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की और बताया कि भाई अमरीश पुरी आप में से बहुत लोग होंगे जिनके बहुत फेवरेट होंगे, और ऐसे ही एक और उनके फैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो दीदी, हमें बावड़िया बोल खड़े शांतनु घोष बोलती
0: जी। कैसे हैं शांतनु? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घर पे सब कैसे हैं? आप कैसे हैं?
1: सब भले आज।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए।
1: तो अंगलेश्वरी के विलेन हिसाब से खुबी भालो लगे। मिस्टर इंडिया तो मुगाम्बो खुश हुआ
0: जी,
1: ऐसे सुने तो खुश हुए गए, ऐसा भालो लगे। हमारे
0: मुगाम्बो खुश होता है तो आप भी खुश हो जाते हैं, क्यों है ना?
1: और विराज होते अन्य रकम पुलिस
0: हम सब मिलकर ये गाना। ओके ओके, वापस मुलाकात होगी, बाय। तो ये थे शांतनु घोष, और सुनना चाहते हैं जिंदगी की यही रीत है, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना हम सब मिलकर।

0: चिड़ी की घड़ी में 7:47 48 मिनट एग्जैक्टली और हमारे अगले कॉलर से चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नज़ारा फिल्मों का।
1: मैं शुप्रिया बोल रही
0: हूँ। जी शुप्रिया दी, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं? मेरे घर परिवार में बस ठीक है, बस आप लोगों का प्यार है।
1: फेवरेट है
0: विलेन,
1: तो मेरे
0: हिसाब से
1: डैनी,
0: तो एक्टर है ओके ओके। तो फिर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: और जो प्यार की फिल्म में जो पोते निकला था, जो एक्टर भी नहीं किया था ना डैनी, फिल्म से चाहे लास्ट उपाय है गाना सुना दीजिएगा।
0: ओके चलिए सुनते हैं ये गाना। ओके
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, वापस मुलाकात होगी। तो ये थी हमारे साथ सुप्रिया दी हावड़ा से, और चलिए सुनना चाहते हैं प्यार झुकता नहीं से, चाहे लाख तूफान है, तो सुन लेते हैं ये गाना हम सब मिलकर।

0: तो दोस्तों चलिए जाते जाने का वक्त ऑलमोस्ट हो चला है, पर जाते जाते आखिरी कॉल ले लिया जाए। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नजारा फिल्मों का में।
1: जी धन्यवाद दीदी।
0: जी बताइए।
1: जी मैं पारस पांडे चुजरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: जी दीदी सब ठीक है।
0: चलिए बताइए, आपके फेवरेट विलन कौन है बताइए। हाँ
1: सबसे मैं विलन का कुछ नाम लेना चाहूंगा।
0: जी बताइए।
1: पुराने दिनों में है कान जी, अजीत जी, रंजीत, जीवन और अमरेश पुरी, डैनी, किरण कुमार, अनुपम खेर और अभी के विलेन में सब अभी जानते हैं, मतलब अभी विलेन मतलब हीरो लोग ही विलेन के रोल में
0: जी,
1: जैसे सैफ अली खान हुए, संजय दत्त हुए, ये सब अभी जैसे ऋतिक रोशन भी एक नेगेटिव रोल किया था धूम पिक्चर में। तो विलेन कहने का मतलब ही हुआ फिल्म में नेगेटिव रोल करना
0: जी।
1: तो कुछ कैरेक्टर एक्टिव रहते हैं और कुछ कैरेक्टर साइलेंट रहते हैं। जैसे कुछ पिक्चरों में पहले से ही विलेन का नाम पता चल जाता है और कुछ पिक्चरों में एकदम अंत में पता चलता है।
0: जी जी जी।
1: जैसे दीवाना पिक्चर में आलोक नाथ जी हुए, सरफरोश में नसीरुद्दीन शाह जी हुए, ये सब साइलेंट विलेन के रोल में थे।
0: जी जी जी जी।
1: तो वक्त का तकाजा देखते हुए मैं परेश रावल जी के एक पिक्चर रावण राज का वो हुस्न वालो ये गाना सुना दीजिए।
0: ओके चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपको गाना और फटाफट सुन लेते हैं गाना क्योंकि समय खत्म हो चला है और मिलते हैं पारस जी वापस आपसे। ठीक है, गुड नाइट।
1: गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
0: थैंक यू, यू टू हैव स्वीट ड्रीम्स। तो दोस्तों सुन लेते हैं रावण राज का ये गाना और इस घंटे का आखिरी गाना है ये। फिलहाल मेरे बाद 8 बजे से आपके साथ आने वाली है प्रीति मुरार का, तो बने रहिए उनके साथ। कंटिन्यू होगा छाया लोक तब, और मैं मेरी मुलाकात होगी कल रात के 8 बजे आपसे वापस छाया लोक में। तब तक के लिए 107 FM रेनबो है ये, मैं पापिया लेती हूँ साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूँ ही बने रहें हमारे साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ, आपके दोस्त प्रीति, लेकर आई हूं कार्यक्रम छायालोक, यानी कि दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस की वो लंबी फाइल्स, शियालदा और हावड़ा की वो खचाखच भरी लोकल ट्रेन्स और ये बाईपास की वो सारा ट्रैफिक अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है आज के लिए, है ना। तो बस घर पहुंच जाइए, घर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, जूते उतारिए, बालकनी की हवा में बैठ जाइए और हवा की एक गहरा झोंका ले ही लीजिए और हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली हो या फिर आपका फेवरेट लेबू चाय, बस एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि अब से अगले एक घंटे तक मैं हूँ आपके

साथ आपकी दोस्त प्रीति, और सुनाऊंगी आपकी फरमाइश का एक प्यारा सा गीत। तो चले आइए अपनी फरमाइश लेकर हम तक। हमारा नंबर है 2213-1341। जब तक आप आते हैं तब तक सुनते हैं ये गीत।

ये जो वक्त होता है ना, रात का 8 से 9 बजे का वक्त, हमारे शहर कोलकाता का सबसे जादुई वक्त होता है ना, जब विक्टोरिया मेमोरियल की रोशनियाँ रात के आसमान से बातें करने लगती है, हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा का पानी थोड़ा शांत बहने लगता है और शहर अपनी दिन भर की थकान भुलाकर अपने परिवार और अपनी पसंद की धुनों के करीब आने लगता है। तो आज के इस घंटे में मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज बात होगी दिल की, कुछ बेहद खूबसूरत यादों की, या फिर उन सदाबहार तरानों की जो रात के सन्नाटे में सबसे ज़्यादा मीठे लगते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कोलकाता के किस कोने से आप मुझे सुन रहे हैं और खिड़की के पास खड़े होकर रात के आसमान को ताकते हुए सुन रहे हैं, या फिर रात के डिनर की टेबल पर बैठ कर मुझे सुनना है, तो ज़रूर बताइएगा, अपनी फरमाइश हम तक लेके आइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप मुझे कहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। वक्त हो चला है 8:12 और आप हम तक पहुँचते हैं, तब तक हम आपको और एक बेहतरीन गीत सुनाते हैं।

0: चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग कीर्ति जी।
0: गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रहे हैं आप? जानी पहचानी सी आवाज है। हाँ जी,
1: मनीरुद्दीन बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी मनोरंजन जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जो जीता वही सिकंदर सिंह से 1992 का, चाहे तुम कुछ ना कहो बहलाना से।
0: ओके,
1: दिन नारायण और साधना सरगम की आवाज भी।
0: बिल्कुल, तो आपकी फरमाइश पर हम जरूर ये गीत सुनाएंगे आपको। तो गीत सुनाने से पहले एक बात बताऊं, कहते हैं कि जिंदगी में इंसान बहुत से सफर तय करता है, बहुत लोगों से मिलता भी है, लेकिन वो जो पहली बार दिल का जोर जोर से धड़कना होता है ना, वो एहसास कभी पुराना नहीं होता। जब हवाएं अचानक थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगे, रास्ते जाने पहचाने से लगने लगे, और कदमों के नीचे ज़मीन होते हुए भी जैसे लगे कि हम बादलों पर तैर रहे हैं, तो ये जो गाना है ना, जो इन्होंने फरमाइश की है, ये बिल्कुल मैच करता है। यह हम उस सबकी उस पहली बेफिक्र मोहब्बत, उस मासूम सी दीवानगी की खुली किताब है, जहाँ मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने महफिल सजाई, जतिन ललित ने जादुई धुने पिरोई, और उदित नारायण व साधना सरगम ने आवाज़ दी। और अगर आप भी इस गीत को गुनगुनाना चाहते हैं तो बस आंखें बंद करिए और साथ में गुनगुना लीजिए।

वक्त तो चला है 8:24 और 43 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 107 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त प्रीति को कार्यक्रम छायालोक में। मोहब्बत के इस शहर में जब रात गहराने लगती है ना, तो दिल कभी कभी किसी ऐसे सुकून की तलाश में जाता है जहाँ दुनिया के दायरों से बहुत ऊपर हो। एक ऐसी मोहब्बत जहाँ कुछ पाने की शर्त नहीं होती, जहाँ खोने का कोई डर नहीं होता, जहाँ एक तरफ राधा का वो पावन प्रेम है जो मिलन की छांव में खिलता है, तो दूसरी तरफ मीरा का वो समर्पण जो विरह की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। राज कपूर साहब की फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये अमर गीत प्रेम सबसे पवित्र, क्या कहूँ, परिवार बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, जो रविंद्र जैन साहब की रूहानी कलम और संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ में जब मिलते हैं तो ये एहसास अपने आप ही जग जाता है। और इस गीत की फरमाइश की थी अशोक कौर ने, तो उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अब एक जरूरी सूचना। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपराह 12:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।

इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल पी 36 सी आर एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in और adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वह उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा अर्थात ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332210612 या फिर 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या पेंशन अदालत के आवेदनों या फिर ईमेल पर डाक अदालत या फिर पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपरोक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

107 FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति। और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि चलो अब इस खूबसूरत सफर पे यहीं विराम दे दो और आपको भी शायद दिन भर की थकान भूलकर ये एक घंटा आपको सुकून दे पाया होगा शायद, है ना। अब चलिए दिन के तनाव को अलविदा कह दीजिए और अपनों के साथ समय बिताइए, खुद भी खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय बाय।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Sattam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूर्व महाराजू विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाऊ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100m बाधा दौड़ 14.80s में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74m की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15m के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200m दौड़ 25.96s में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100m बाधा दौड़ 14.61s में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71m की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44m थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200m दौड़ 26.27

0: सात सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for India in rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Sattam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Raj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yongbok found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
2: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकोवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हरा कर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मलिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला, जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा और इराक के अली कासिम को वैंकूवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
3: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
0: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
3: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
0: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल दो में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
3: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
3: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500 meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500 meter finals with the quartet of Niyocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500 meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200 meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
0: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
0: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna Jay Menon are in action in the women's shot put final, while the women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, keno, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

सुनचलम वो चांद निकला वो चांद खिला 1959 छवि अनाड़ी ये छबिर गान सुनचलम गाचिलेन लता मंगेशकर लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी कम्पोजर शंकर जयकिशन एबारेर गाने यशुदास